0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

ना देखा करता था तुझे बाहों में ले जाऊंगा, एक चलती फिरती अग्नि से सीने की आग बुझा लूंगा। एक सपना देखा करता

ना निकला डसक गया शब का अंधियारा, डसक गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सर और शबनम।

आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, फूल सा रुख और शबनम शबनम पल झलक में लुक गए हम, फूल सा रुख और शबनम।